त्रीणि चत्वारि ओम हंसा हंसाय विद्महे परम तन्महंस प्रचोदयात् स्वाहा सद्गुरु परमात्मने नमः।

द्वे त्रीणि चत्वारि ओम कुक्कुटध्वजाय कुङ्कुमवर्णाय महामोहनाय वंशवृद्धिकर

आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है, हर तरफ शोर है, हम सबके मन में कोई ना कोई उलझन है। हर इंसान शांति खोज रहा है, उसे एक ऐसे सहारे की तलाश है जो इस शोर के बीच भी मन को शांत रख सके। और तब जब मन को किसी अपने की जरूरत होती है, एक नाम अपने हृदय से निकलता है, शिव। वही शिव जो केवल हमारे भगवान ही नहीं, हमारे सबसे अपने हैं। हमारी हर खुशी में शिव, हमारे हर दुख में शिव, हमारी हर सांस में शिव। तो चलिए कुछ पल के लिए अपने मन को उसी शिव में डुबा दें और अपनी इस छोटी सी भक्ति को उनके चरणों में अर्पित करें। प्रस्तुत है जय शंकर महाराज।

0: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
1: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: Sri Rag Mahalla Pahla Chitte Disai Taulahar Bagge Bank Dwar Kar Man Khushi Osariya Dujai Het Pyar Andar Khali Prem Beno Tehteri Tanishar Pai Re Tan Tan Saath Na Hoye Aram Naam Tan Nirmalo Gurdat Kare Prab Soye Rahao राम नाम तन निर्मलो जो देवै देवन हार आगे पुछ न हो गई जिस बेली गुर करतार आप छड़ाए छुटी है आपे बख्शन हार मन मुख जाना है अपने तिया पू संजोग नारी देख विगासी है नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चले वित जावनो सागत डोल डोलाए बाहर टूंड विगुची है कर मैं वस्त सो थाए मनमुख हम मैं कर मुसी गुरमुख पल्ले पाए साकत निर्गुण आर्या अपना मूल पछाण रकत बिंद काय तनु अग्नि पास पिराण पमने कह वस देहुरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़े कोए सुख जीवन तिस आखिए जिस गुरमुख वसिया सोए नाम होने क्या गणी जिस हर गुर दर्श ना होए ज्यों सुपने निसपुली है जब लग निंद्रा होए इउं सरपन कै वस जियाड़ा अंतर हम मैं दोए गुरमत होए विचारी है सुपना हो जग लोए अग्न मरै जल पाई है ज्यों बारक दूधै माए बिन जल कमल सो ना थिया बिन जल मीन मराए नान गुरमुखा रस मिलै जीवा हर गुण गाए श्री राग महला पहला डूंगर देख डरावणो पेयड़ डरियास ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तितास गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास पाई रे पाव जल बिखमन डराऊं गुप पूरा सतगुर रस मिलै गुर तारे हर नाऊं रहाओ चला चला जे करी जाना चल नहार जो आया सो चल सी अमर सो गुर करतार भी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार दर कर महला सोहने पक्के कोट हजार हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लाखिया पार किसी नाल ना चलिया खप खप मोया सार सोयना रूपा संची है माल जाल जंजाल सब जग में दोही फेरी है बिन नामे सिरकाल पिंड पड़े जियो खेल सी बद फैली क्या हाल पुत्ता देख वगसी है नारी सेज पतार चोवा चंदन लाई है कापड़ रूप सिंगार खेहू खेर लाई है छोड़ चले घर बार मेहर मलूक कहाई है राजा राव के खान चौधरी राव सदाई है जल बलिए अभमान मनमुख नाम सारिया ज्यों डबददा कान हौ मैं कर कर जाय सी जो आया जग माहे सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सुवाहे गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिय सच नाम सिरसाहा पातशाहो मैं हर नाम न विसरै हर नाम रतन वेसाहो मनमुख पौजल पच मोए गुरमुख तरे अथाहो श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर बैसना निचलने की तोख मुकाम ता पर जानिया जा रह निचल लोक दुनिया कैस मुकाम में कर सिद्क करनी खर्च बांधो लाग रहो नामे रहाओ जोगी ता आसन कर बह मुल्ला बह मुकाम पंडित वखाने पोथिया सिद्ध बह देव स्थान सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन ਸੇਖ ਪੀਰ ਸੰਘਾਰ ਦਰ ਕੂਚ ਕੂਚਾ ਕਰ ਗਏ ਅਵਰੇ ਪੇ ਚਲਣਹਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਅਮਰੇ ਗਏ ਕਰ ਕਰ ਕੂਚ ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਕੇ ਚਲਣਾ ਦਿਲ ਸਮਝ ਤੂੰ ਪੇ ਪਹੂਚ ਸਬਦਾਹ ਮਾਹੇ ਵਖਾਣੀਐ ਵਿਰਲਾ ਤਾਂ ਬੂਝੈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਲਥਲ ਮਈ ਅਲਸੋਏ ਅਲਾਹ ਅਲਾਖਾ ਗਮ ਕਾਦਰ ਕਰਨਹਾਰ ਕਰੀਮ ਸਭ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮ ਏਕ ਰਹੀਮ ਮੁਕਾਮ ਤਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੀ ਲੇਖ ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮ ਓਹੀ ਏਕ ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੈ ਨਿਸ ਸੱਸ ਚੱਲੈ ਤਾਰਕਾ ਲਖ ਪਲੋਏ ਮੁਕਾਮ ਓਹੀ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬਗੋਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਾਰੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ।

भाई रे भगतहीन काहे जग आया, पूरे गुरु की सेवना कीनी, वृथा जन्म गवाया रहाओ। आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को वक सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटांब मोहे लोभाना, चल दिया नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिसदी कीम ना पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाणै, अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मन नहीं वसिया, अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अन दिन भगत करै दिन राती, हौ मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तै सो होवै, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे भाव लाए, गुर सबदी विचार। सतगुर सेवे सहज उपजाय, हम मैं तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै, सच रखिया उर धार। प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए, नाम निदान हर मन वसै, हम मैं दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया, हम सतबल हारै जाओ, अपने मन चित कह कहाई, अपने मन चित कह कहाए, बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत मच्छर सुखदाता, कर कृपा मन वसाई, नानक सोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वड़ियाई। श्री राग महला।

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है हो मैं जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावे कोई न मेटे भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा पाओ न जाने सतगुर भेटे निर्मल होवा अंदन नाम वखाणे एको पड़े एको ना बूझे दूजा अवर न जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन गुर परम भुलाए सतगुर सेवै तां गत मित पावे हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी से उचित लागै आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा ना चेतै तां गत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत में नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने बिटाओ जे हर से ती चित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से ती रंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर

आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार। सहजे अदिष्ट पछाणिय निरपौ ज्योत निरंकार, सबना जिया का एक दाता ज्योति ज्योत मिलावनहार। पूरे शब्द सलाही है।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज। चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग। ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए। चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार। चारे किलवख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया। चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमख सिमरत तरिया। शास्त्र सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे। तपे तपी सर जोगिया, तीर्थ गमन करे। खट कर में

रंग तमा से बहु विधि चाहे लग रहा। चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत शोभा निर्मल रीत। मात पिता सुत भाइया साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।